चांद, सितारे, फूल और खुशबू, ये तो सारे पुराने हैं। हांद, तारो, माल, सोल, मेवा को मारी पारना है। तासा तासा खली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। अलत मलक पे पहला, मंगे माला जब पिस्सू